0: Koe ngahi senta to kangai kina e mo ui, uraki seve si whakawhaito oia, ok toton ke tau whekumi ki ai, I afie ma tokon. Ogulahi e ngahi senta to kangai kina e mo ui lelei I Alice Spring, hange koe GP, ngahi tokon I whakawave wave, ma uri, pe toketani fo. Koe hape hawhaahinga fie ma tokon I he mo ui, mo ui lelei o kuke fie ma, ok whakangofua e ho o visa, Keke ahia e ngahi tokon I whakawhare mahakin. Hafie mau tokon, fie tuutaki mai ki he miska, I he telefoni, noa valvalu, hiva ni maua, valfitfituon, pe koe website
1: mcsca.org.au.
0: Koe whainga maari e ke ngahi polo sek tokon I whakawhare mahaki, whakaivi eia I he Māori Culture Community Service of Central Australia, pea pehe ki he poupou, INTPHN.
2: The Multicultural Access to Primary Healthcare Program is managed by Multicultural Community Services of Central Australia and supported by the Northern Territory Primary Health Network and 8CCC.
3: Primary health care kya hai? Primary health care wo service hai jo aapke liye Alice Springs mein available hai. Is service mein aap GP, agent care, midwife और डेंटिस्ट की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हो आपको अपने वीज़ा के मुताबिक ये सर्विसेज मिल सकती है आपके सवाल के लिए आप मिस्का को 0889528776 पर रिंग कर सकते हैं या उनके वेबसाइट पर miska.org.au पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया मिस्का जिसको सपोर्ट दे रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क
2: द मल्टीकल्चरल एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया एंड सपोर्टेड बाय द नॉर्दर्न टेरिटरी प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क एंड 8CCC

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।